जाइए प्रभु कैदा, आन न भी आ तेरी समसर, तेरे बिना होर कोई सुझदा नहीं, क्योंकि होर किने बा फड़नी है, जिदे नाल प्रीता पाइया ए प्रीता कुड़ियां हो गईया, ए निरंकार तेरे चरणा दी प्रीत सच्ची है, सारे दरगाह के तेरी चरणा विच पुजे हां, इसलिए नानक अवर न सुजई हर बिन बख्शन हार, तू बख्शिंद है, तू बख्शिशां दा सागर है, जे मेरे पापां दे दो चार बेड़े डुब भी गए सागर नूं की फर्क पवेगा।

ज्ञान जन करके रात असल सारे प्रियात नानक नावे बाज सुनात राग धूंगरी महिला चंपा हरके जन सदगुर सदमुखा बिना गणों गुरपास हम कीरे चरम सदगुर शरणाई।

गुरमत नाम मेरा प्राण सहाय, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड़ पहाड़े जन हर हर सरदार प्यास, हर हर नाम मिलै प्रकाश मिल संगत गुण प्रयास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, हे भावहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जन हरजन सतगुर संगत पाए, तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जत हर रंग पाया, मिल जन नानक नाम प्रयास। राग गूजरी महला पंजा, काहे रे मन चितवें उद्यम।

पुरुष एकताओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन अगमान मातार सत्य हैं सत्य हैं खुद जी हर सच्चे सर्जनहार सब जी तुम्हारे जी उनकिया का दातार हर त्यावा

तेरा किया सब होए खुद दिन दूजा वरण कोए तू कर कर वेखण सोए जन नानक गुरमुख परटोए आशा।

परिय जुम जुम शत्र हमारे मरिय देश से जग में गौ चल राख आप मोहे और न दल तुम मम करो सदा प्रतारा तुम साहेब में दास्यारा।

अर्नाडों तू मन मेरे तू सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सोचो मनो विसारे ऐ नंत मन मेरे सदा रोर नाले साचे साहेबा प्याना ही करते रै भगतों तेरा सब शह जिस देश हो पावे सदा सत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शंत मेरे कह नान सचे साहेब क्या ना ही करते रै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन कुकरा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा प्रमान किता गुरु बिटो जसिया ए बड़े आईया कह नानक सुनो संत शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचावद तरस भागै तरस भागै शब्द वाजे करा जित घर धारिया पंच भूत तुद वस कीते काल संकट मारिया घोर कर्म पा तुम जिनको से नाम हर कह लागे ऐ नानक तैं सुभ होआ तित घर अनहद वाजे मुंदावणी महला पंजवा आग विच तन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर सत्यो जिसका सब साधारो एको खावे जेको पुछे जिसका होए उधारो ए वस्त जी ने जाई नित नित रख और धारो हम संसार चमल प्रिय सब नान

0: बावली जिथे तू समर्थ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माई सुन के जंगे तू नाए तेरे छट जाए भौजल बिख मसगा हो गुर शब्दी पार पाए जिन कौल की प्यास अमृत से खाए कल में ओ कुन गुण गोविंद गाय सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे जिसका कोई न जाए जे आवे तो आए श्लोक महला पंजा अंतर गुर आराधना जेवा जगुर नाव जितनी सदगुर पे खाना श्रवाणी सुनना गुरना सतगुर से पी रखते हैं दरगाह पाई है ठाव सौ नाम कृपा करे जसनो ए वत दे जग में उत्तम कांडिया है विरले के ही के महला पंजा रखे रखना हारिया गुरकी मैरी पाए काज सवार हो आया बदयान मनो नाम सारियन साध जना के संग भव जल तारियन सात दिंद गोटा खिन माए बिदारियन के नानक मन माए जे सिमरत सुभोए सगले डूब जाए रसायल की टेक नानक मन माए जे सिमरत सुभोए सगले डूब जाए वही का
1: मला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ा, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के उसकी पूजा करा, उसकी सेवा करा, मैं भी उसके दर्शन करा, उसके दर्शन करके

इस सन्यासी पिता मेहता का लुन ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, ये कहो जिहा सुपना है? ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी।

उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे कर नारायण प्रगट होया है चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे तन गुरु नानक साहब दे कमरे वाल चल पे ते की देखते तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे में दीवा नहीं बलता पर प्रकाश है मंजे ते सतगुर लत्था लमका के बैठे हैं चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषों के नाल भरे है। मंगला चरण दे

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली माता तृप्ता नु पुछदे ने तृप्ता नानक किथे ता माता तृप्ता जी कहन लगे ओ ते बड़ी देर हो गई बाहर खेडन गए ने

अपने माता पिता की परवाह नहीं करते। ये सिख्या उन्हां वास्ते कि देखो वो गुरु नानक साहब जिन्हां नूं दुनिया नमस्कार करती है वो धन गुरु नानक साहब अपने पिता नूं मत्था टेकदे ने ते सानू उपदेश देंदे ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर वो मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है। माता पिता औलाद नूं जन्म देंदे ने, औलाद माता पिता नूं जन्म नहीं दे सकती। ये मापिया का वड्डा गुण है। अजकल देखते हैं अजकल दे बच्चे आम माता पिता नूं कह देंदे ने जे तुसी जन्म दिता ते की होया, ये तुहाडा फर्ज सी। कमाल है, बच्चे मापिया नूं कहंदे ने जन्म देना तुहाडा फर्ज है ते बच्चियां दा की फर्ज है? वो माता पिता नूं दुख दे, वो माता पिता नूं ठोकरा मारे, ते बच्चियां दा फर्ज है? जन्म देण वाले माता पिता दाते हन, दाते दा शुक्र किया जाता है, दाते दी सेवा कीती जाती है, दाते नाल मेहने ताने नहीं पिड़े जाते। सत्संगत कल्ला सुनना नहीं, सिख्या भी लैनी है, अपने माता पिता दी सेवा करनी, माता पिता दा आदर

सफल नहीं होता जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते। उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होती।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे हां एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओ ही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जदों बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे हो चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी विद्या

हर विद्वान सुखी ना हो सकिया। बीमार ते दुख विच है ही पर तंदुरुस्त भी दुखी है। हर एक दी चाहत वख वख है इसलिए हर एक दा दुख भी वख वख है। सतगुर पातशाह पवित्र

कौन कौन दुखी है? पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आगे आकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार होवे। ए वी तां इक दुख है।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई अवतार सिंह।

नारायण कहा। सचमुच जदों कोई सच्चे मनो नारायण कहंदा है ता पावे वो गुनाहगार है पापी है ओदा भी उधार हो जांदा है। इस पौड़ी विच भाई गुरदास जी ने अजामल पापी का जिक्र किया है। इतना पापी जिदे बारे बाणी विच साहिब जी बयान करदे ने अजामल पापी जग जाने। इस अजामल पापी नू सारा संसार जानदा।

गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा है किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा है। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने घरों तैयारी की थी, घरों तुर पिया अजामल। शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा, कलावती नाम दे इक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देख लिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंची, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचो निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोज दा काम बन गया वेसवावां दे बाजार विचो आना, वेसवावां दे बाजार विचो जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया, शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे, गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है

गुरमत दहया गुरु तू बेमुख हो गया गुरु दा कहना नहीं मनिया ते पाप कमान लग पे गुरु नू पता लग गया गुरु ने समझाया अजामल वेसवा दे कोल जाना बंद कर दे पढ़ाई कर अपना मन पढ़ाई विच लगा अजामल ना मने अजामल दे पिता नू

देख अजामल तू राज पंडित है, तू लोकां नूं उपदेश देना है, जे तू माड़े कम करेगा तो लोकां नूं किवें समझावेगा।

जंगल चला गया। दूसरे पास से कलावती वेसवा जेड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन साधुआं नू संता नू अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ी करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोड़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इहनू बाहर रख दे। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्या। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे, कि अज महापुरश साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है।

0: गया।
1: जदू ये गुरुद्वारे गए, गुरु दे द्वारे गए, ते महापुरुषा ने अजामल दे सतवें पुत्र दा नाम नारायण रखिया, गुरमुख नाओ नारायण कहया। गुरमुखा ने महापुरुषा ने कहा, अजामल तेरे पुत्र दा नाम असी नारायण रखिया है, इस नु तुसी

पुत नारायण बोले शया जमदूता नू देख के डर गया पुत्र भुल गया ते उची सारी कहंदा नारायण बचा ते नारायण परमेश्वर दा नाम है।

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।